कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम, हमने खाई है कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है पट्टा की लड़ी है, आंखों में गुस्सा

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम, हमने खाई है कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है पट्टा की लड़ी है, आंखों में गुस्सा